रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई।

त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां।

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर।

वै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का

तुद बिन दूजा अवर न कोय, तू कर कर वेख जान है सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रच्चा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै करतारा।

रह प्यासा। तो मैं चाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाऊ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जू करे हो रच्छा। अच्छा।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा।

सब जगत बनायु, देव दैत जक्षण उपजायु, आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कृपान अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पहु राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पहु शंकर कैठा, शिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम्पव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव,

करू रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो क

हे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद सिद्ध करमु सब हुई दुष्ट छा छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुंभारा।

मतिक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह अमिक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हिब खान्यू दो हरा सगल द्वार कौ छाड़ कह कहो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब फुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु, जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहु संतहु, शब्द धरहु प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया।

लागी। कह नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, अनद सुनहु वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे।

पूरी बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल।

नित्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव सतगुरु सेती रत्या दर गह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

साध जना कै संग भव जल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माही, जिस सिमरत

सासंगति बोलो जी। वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिवरी पाची दसवीं प्रथम गति से मरकाय गुरु नानक लहित आए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास आए अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर कार नौ निधि आवाए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ताई हुए सहाय दसा पाची के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर दत्ते अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपिया वड़ जा क्या दे चलाई ते वाही देख निड़की दत्त ना प्यारे सत्यारे की कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी। वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लुहाइया चरकड़िया से चढ़े आ रहे चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे संश्वासा संघ निभाया तिना नहीं कमाए जाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा गुरुद्वार अंदर अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम किताब है यद आवण का सद का सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब तरह देखते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बुरबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंदे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत दूजी मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की आज पंधे सदा सहाय दता जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब ढोर गुरुद्वारे गुरुता जिन्हों तो आपने पंथ न छोड़िया गया दर्शन दार सेवा संभाल का दान अपने खालसा जी बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ने दतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास हे की प्रवास जी आप जी के चरण कमला अरदास दिता ने आप बख्श की है अद जाना पिता गुरबाणी सुखमनी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता है ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण शोरदार रह रात साधु पाठ किते कृपा करो हुईया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड पुराण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय निशानी कृपालता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी टाने मनबुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी आप जी दख्शिया दाता पिता कड़ाप शादी के अग्न तैयार करे हाजिर दतार आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद शाह संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शी करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देह प्रदेह रखा बख्शी करो जी हे जीवन बाज आप जी बख्शे दाता जो लंगर चुट सवार प्रवान करो आदि चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिए सिंगा सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकल बख्शो अति सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो गरीब नवाज जी अमृत वेले तो लैके दाते आई साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगता का दर से तिरफर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो खास संबंध नु सिख कौम एक दस भाग प्यार की बख्शिश करके सत नाद बख्शो चानना ना जोड़ो गुरबान जा प्यार बख्शे करने दार हर मैदान जवान फतेह बख्शे की बालता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराज करें बैठी लाइव करता कि सरवण कर रही सारी संगत निहाल जी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दर्द गरीब नवाज आपने उदो बख्शे ने संगत उदो बख्शे संगत आपके चरणा धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह अवतार संगता माया पेटा कारी चरना प्रवान करो बख्शा दिया कमाइया सवर करो कार्य वाद्य वक्त तार सब संगतान दुभकामना पूरी करो जी तार मेहरा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो तार पितर को नाम बख्श करके अज शाम कथा की रमता वासी आगा बख्शो रेंदे कार सुवार के चरना तुना बनाओ से ही प्यारे मेरे जिन्हें बनाओ तो नाम जतावा नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्या भई अकाल के तरी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल बोझ है गोज शब्द में

है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मागे संतर वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालू सतगुरु जी ने अपार कृपा रहमत कीती है। पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके सतगुरु जी ने दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। निहाल कीता है सतगुरु जी दा कोटान कोट शुक्र है। उपरंत पावन पवित्र श्री मुखवाक अज दे रबी मुखवाक सतगुरु जी ने बख्शिश कीते हन, जो सूही राग अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी की अमृत रचना तो उचारण पावन शब्द सतगुरु जी के पवित्र अंग 742 उपर सुभायमान है। गुरुदेव जी ने हुक्म रूप विच बख्शिश कीता है। पंचम पातशाह जी ने यही रहमत कृपालता कीती है कि ओह परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जिहदी कृपा दे नाल प्रभु दा गुणगान कीता जांदा है, जिहदी कृपा दे नाल गुरु बख्शिश दा सदका प्रभु मार्ग दा जीव पांधी बनदा है, गुरु उपदेश सदका जीवन दे अंदरों दुखां दा पापां दा नाश हुंदा है, सुखां दा आनंद दा खेड़े दा आगमन हुंदा है। उस गुरु दी सिख्या ते उस गुरु दे उपदेश ते सदका सो ऐसे गुरु तो मैं सदा बलिहार नहीं जावां, ऐसे गुरु तो मैं अपना आपा वार दियां ते सदा ही अठे पैर ही भाव हर दिन रात मैं ऐसे गुरु की कीर्ति करदा रहा, उस गुरु नूं त्यौंदा रहा जिहदी बदौलत जिहदी बख्शिश दे नाल जिहदे उपदेश दे नाल यह मनुखी मन पवित्र हुंदा है, यह मनुखी जन्म सुहेला हुंदा है, यह मनुखी जीव आत्मा परमात्मा विच अभेद हुंदी है, जिहदी कृपा दे नाल ऐसे गुरु तो भाई सदा वार ने बलिहार नहीं जाइए। सतगुरु दतार पिता महाराज ने अजे हुक्म बख्शिश कीता है। गुरु कृपा करे सानू सबना नू अपने दरों करो नामदान, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन जी आओ प्यार सहित हुण अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ होणगे। आपा प्यार सहित हाजरियां भरनियां जी फुल्लां चुकां दी खिमा। समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, श्लोक एको अंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरों जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगंत अनिकै। वेद प्राण सिमरत सोदाख्यर, किन्ने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी नयावै। कांखिए कै दर्श तुहारो, नानकुन संग मोहे उदारो। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै।
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੁਧਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਣਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨਮਾਏ ਉਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਕ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ਜੇ ਮਾਰ ਗਿਉ ਜਾਤ ਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਿਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਈ ਸੰਘਾਰ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ
ऐसा नाम जपू मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जे मार के गण जाहि न कोसा, हर का नाम आ संग तोसा, जे पैड मंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम थे नाल पछानू, जय महाप्यान तप्त बोकाम, तय हर के नाम की तुम परछाम, जहा त्रिखा मन तुझ आकर कह, तह नानक हर अमृत बरख, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम दरेजन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान, मन तन नाम रते रंग कै, नानक जन कै विरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सुठानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पूजन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्ता, नाम की महिमा संत हृदय, संत प्रताप दुर्ग सबन सह, संत का संग वडभागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कचेवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग मन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, मां उदास फिसर थीवे, अगन माहे होमत पुराण, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे, अगन माहे होमत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर दे छुट्टे, गर्व गमान मन ते हुट्टे, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहुत

0: जाने तुमरा अंत उचेते उचा भगवंत सगल समग्री अब तुमरा सूत्र तारी तुमते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कैला गयान सुआए नानक नसी जई बिन्ना वै पथ जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण बिखूट गवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सो नाही चारा ताकू की जय सत नमस्कारा जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोक नानक तिन पाया गंत सब अपनी दे रास खात पीत बरतैन दोला सपनी मान कच बौर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रति ताप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु से आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा मान माथ है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक पाद माया के हित सर पर होत जान अनित बिरकी छाया स्यो रंग लावे ओ बिन से मन पुछतावे जो दिसे सो चलन हार लपट रहे होता अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेहि ताकू हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती सुवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मुह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रहे मिथ्या नित्र पेखत पर त्रय रूपा मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले विरथि सागत की आर जा साच बिना कहो सुचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाऊ नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काऊ पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण पर आता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पैमाने आप है आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिसले लड़ लाए तां थनंतर या समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग देव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ती अमृत खाही तिस ठाकुर को रख मन माही जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडा वह तिसे त्या कथवर लुभा वह जे प्रसाद सुख से सुई जय मनाठ बैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मान मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तिरु रहता तर मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गह मान पावे नानक पद सिद्धि कर जावे जिस वे प्रसाद जे प्रसाद अरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौला रह तो मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरु प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मुलक धना राख प्रभु प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सह त्याई सह त्याई जो एक कल कह इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बोदान मन हट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद फीकै विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलह जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै सा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तुता सिवराच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोई प्रभु दया ते मातु तम होई सर्व निदान प्रभु तेरी मया पो कछु न किन्हु लया जित जित लाओ तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु नाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवंता साध जन की चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत साध संग मन सगली खोत साधक संग मिटै अभिमानु साधक संग प्रगटै सुग्ञानु साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नवेरा साधक संग पाए नाम रतनु साधक संग एक ऊपर जतनु साधक महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साधक शोभा प्रभ माहि समानी साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा पर फुल्ले साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत हूं तावे साध संग स्थित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न बिगा पैरु साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हौताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग न कब हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लै साधु कै संग जर सह साधु कै संग बसै थानु चै साधु कै संग मैल पहुंचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन से सबको बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान कम नानक साध के संग सफल जिनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलुकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग यहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध संग नमंते विषय साध संग सर पर निस्तर साध संग लग गया परम मीठा साधु कै संकट कर डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध संग मिटे सब रोग नाम साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जीता सुने ते तब क्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सुधा बेअंत साध की शोभा ऊंचती ऊंची साध की शोभा मूंचती मूंची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कस बिन कोई नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो स्वति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंको लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी क्या धीरज एक ज्यो बसदा को खुदय को छंद लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाऊ नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास हो जैसे तारू पर आकाश हो ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जूता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयासु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोकुर तारे जुवंतर नाम सर्व में पिखे भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानको पर सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिखे नेत्र साध की टहल संसंगीत कर न सुने काहू की निंदा सब त्रिजाने आप सुको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टर इंद्र जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा पर सुबह सुन सोजी सुपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपालु। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक होवै सुन परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट कर संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। सासंग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मंत अर्पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम मैं सोदै। राम नाम सार रस पीवै, पंडित कह दे जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै। वेद प्राण सिमृत बूझै मूल, सुख मैं जानै असूल। चौ वर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत हुए, सासंग पावै जन कोय। कर कृपांतर उतारै, पस ब्रिज मुद पात्र को तारै। सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। का हुजूद कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास। आत्म राम तिसन दरी आया, दास दसन तिन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूजी पर। सगल संगात मुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा तुम्हें तावे, जीवन मुख सो कहावे। तैसा हरक तैसा सोग, सदानंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी बिकाटी। तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ता ईसाई जुगत, नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित घर राखै। तैसा तिन नाऊ, आपे करण करावन जोग। प्रभावै सोई फुन होग, पसर आप अंतरंग। लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मादे तैसा प्रकाश। पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल। सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक उस्तत करै अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहु विधानिक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद की श्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव का विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कांत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर। कई कोट पर दर्व को हिरे, कई कोट पर दुख न करे। कई कोट माया श्रमाए, कई कोट प्रदेश प्रमाए। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिजती जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट शशियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस्तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र। कई कोट कीर्तन समुन्द, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे शुकर मृगाच। सब ते नीर है, सब हूते दूर, नानका पलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवे मरै, कई कोट बोजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाही, कई कोट कालै तक पाही। कई कोट गीत नवंत, कई कोट माया में चिंत। जय जय पाणा तह तैरा के, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे। कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिनले विलागी। कई कोट प्रभु को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभु विनाश। कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार। कई बार पसरो पासार, सदा सदा के कंकार। कई कोट किन्ने बोपात, प्रभते हुए ब्रह्मा समात। ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे। कई कोड़ नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोड़ नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन का अपने जन को साथ साथ संभारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार नैंजल थल मही अलसो अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होग खिन मैं था पुता पनारा अंत ने किछ पारा वारा हुक्मे तार तर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म संभावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा सुमाई प्रभावे मानु गत पावे प्रभावे ता पाथर त्रावे प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावे ता पथ उधार है आप करे अपन विचार है दुआ सिरिया काप स्वामी केले विकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुक थे क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए त सब किच ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत विख्या मै रचै जी जानत अपना बचै परमे भूला दै दिस आवे निमक परमे भूला दै दिसतावे निमक माय चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले किन मैं नीच कीट तो राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका तिष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दा जिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीश ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे दिख बढ़ाई इस काबल ना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई फुंती हो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद छिंद व्यवहार कबू उबकाश पयाल कबू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत करे बहो पात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीरत में आवे कबू भला भला गहावे ज्यों प्रवरा खैति ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीरथ स्नान कबू सिर साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जुन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवै नचावे जो तिस्भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोई कबू सा संगत उपावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान सुरुख सुखी बसे मस्कीनी आयाप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जनता उसको करवंत कहावे जन्म रह भोजन फरमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता का सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भावे तिन समान का संग न जावे बोलस कर मान को पर करे आस पल पितर ताका हुए विनाश सब ते आप जान बलवंत किन मैं हुई जाय पिसमंत किसे न बदया अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटे विमान सोजन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे निक तपस्या करे अहंकार नरक सुरख फिर अवतारण के जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे पसको जो भला कहा वह तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझ ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोई जब ये जाना मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक को छूटे सहज कटे लग कोटता वै तृप्त न आवे माया पाचे पावे भोग विख्या की करे न तृप्त आवे खप खम मरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृत्ते सो काजय नाम रंग सर्व सुख हो बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदन नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचारु जैसी दृष्ट करी तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किन्नो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे दिखे करे विवेका पहे का पया नेक मरण बिनसै आवै न जाहि, नानक सद ही रह समाय। आप उपदेशै समझै, आप अपि रचिय सब के साथ। आप किनु अपन विस्तार सब कछु उसकाउ करने हार, उसते पिन कहो कि जो यथांत अंतरिके सोय अपने चलता करने हार। कौत कर रंग पार मन में अमन अपने माही, नानक कीमत कह न जाय। सत्य सत्य सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी, सच सच सत सब किन्ना कोट मदे किने बिरले छीना। पला पला पला तरा रूपा सुंदर पार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। कट कट सुनी श्रवण बकियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक, संत शरण जो जन पर है सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुख नार जा खटै, संत कै दुखन जमते नी छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सुभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संसंग निंदक पी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जोन लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन अतृग्त जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का धाओ को नाहि, नानक संत पावै तो पी गत पाहि। संतन का संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक खिंटक न पाई। संत का निंदक माह त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित। संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म में मरे, संत के दुख न सुख ते डरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावै ताले मिलाए। संत का दुखी अत बीज ते टूटे, संत का दुखी किथे काज न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये। संत का दुखी अंतर ते तोता, जो सास बिना मृतक की लोता। संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि। अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी गवर न रखनहार। नानक संत पावै ताले उबार, संत का दुखियों बिललाए। जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा। जो पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे केला। जो बुआड़ तिलके तुमाए दोहिला, संत का दुखी धर्म ते रहत। संत का दुखी सदमित या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया। नानक जो तुझ पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजा न ऐसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई हुए। पया कीर्त न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई। सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यागो सास ग्रास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेलाप करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी। नानक जन से श्लोक, तजहु से आनप सुरजन हो। सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो। नानक दुख भरम पो जाए, अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति। सब जान देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रह गाय बोर्न तृष्ण लग गया। आय मारे रखे कुआ, मानु कह किछ नाही हाथ। इसका हुकुम भूसु कोई, जिसका नाम रखंठ प्रोय। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोय, नानक विघन लग गए कोई। उसन मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पे ठाकुर का रंग, साह संग बिन सह सब संग। चरण चलो मारु गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उचल मथा बड़भागी। तेजन जगमाए, सदा सुधार के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुतकी सुजी जान। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। साध संग हर हर जस कह, तो सर्व रोग त्यो हर जन रह। तो अंदर कीर्तन केवल बख्यान, गिस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की असत, इसकी कटी जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रमंच ते आवे, सो सन सोहेला नहीं दुलावे। जिस पर भी अपना कृपा करे शुभ सेवक को किस टेडर है जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया शोधत शोधत शोध सी जिया गुरु प्रसाद सब उजिया जब देखो तब सब किस मूल नान सो सुखम सो ये सूल है कि जन्म मैंने अपन चलता भी करे अवन जान दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि आपे आप सकल में आप अनिक जुग त्रज थाप थाप अपना सीना ही किच खांड तारन तारे हो ब्रह्मांड अलक पे पुरख प्रताप आप जो पाए तो नानक जाप जिन प्रभु जाता सुसु बावंत सगल संसार उतरे तिनमंत प्रभु के सेवक सगल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप पाए निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिष्णु कृपा करे बड़ भाग्य नाम जुत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किच करे सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हो ऐसो होए करण हर पहचान सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सत सा दृष्टाना जिष्ट उपजे दिशा समाये सुख निदान बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकर सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपति टूटी गाडन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन वाही तिस्ते बृथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचे कोई तिस भी नाही ची रह किच काम गत नानक जपे खर नाम रूपवंत हो नाही मुह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता हो क्या कुगर्व है जा सब किस तिसका दिया दर्व है असुरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जी को हुए वह दातार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नान सोजन सुधा रोग जो मंदिर को थम है थम त्यो गुरु का शब्द मन है स्तमन जो पाखान आप चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर है ज्यो दिखार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो विकास जो माव जान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचे पूर मन मूर्खाहे बिललाए मन मूर्खा ही बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कच करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रहे रसलू भी पतंग राम नाम जप हृदय माही नानक पद सिद्धि कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लिहो मन मूल राम नाम हृदय में तूल लात के सुनते संग चाल अवर त्याग लिखिया जंजाल धन धन कह सब कोई मुखो जलर दर कह सोए वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पीओ और साधु को अपना जीव साध की तूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाइय साध संगर कीर्तन गाइये अनिक बिगनते साधु राख हर गुण गाय अमृत चाख्या उठ गई संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया अमृत को जीवा लनहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जा की दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस चिस्का करने जो तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सूजन निर्मल थिया जाके मन गुरु की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रवचीत भगत पग सुनिया त्यो लोहे जाके हृदय को हुई सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुकैत साची दृढ़ सचाया कारु सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिस है बुझाई नानका जिसो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्री त्याग तिस्ते पर नाही किच कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गवीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई हो हरण भरण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने हो अनद्रु मंगल सजा कै सर्व तो सुनिया करता कै राज में राजयुग में जोगी तब मैं तभी श्रीकृष्ण में भोगी त्य त्य भक्त सुख पाया नान त्रिस्पुर का किनंत न पाया जा की लीला की में जना सगल देवारे वगाहे पिता के जन्म के जान है पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाहे जन्म मरे फिर आ वह जाए थी ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना फेकरे करंग, नाना विद कर बणत, नाना विद किन विस्तार, प्रभु विनाशी एक अंकार, नाना चलत करे किन माए, पूरे पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर दिसके सब तिसके ठाऊ, जब जब जीवे हर नानक हर नाउ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद प्राण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगला कार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम कैसा गुदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत चाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतू सत सत साकी बाणी, करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरख समाय समानी, सत कर्म जाकी रचना सत, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पात, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय जिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत वचन साध उपदेश, सत तेजन जा के हृदय प्रवेश, सत नित बुझे जे को नाम जपता, की गत हो आप सत की है सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसु करने हार वर न बूझ करत विचार, करते कि मित न जाने की अनान, जो जिस भाव है सुवरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंगराज जन रही, गुर कै वचन पदार्थ लही, हुए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है, पे सच नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब हुए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान मन प्रगटाया, पह ते निरपो हुए बसाना, जिसते उपजिया ते समाय समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पिन्ना कहना जाई, बूझे बूझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम करंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रवतार है, नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देह बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत में तो कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक कुछ दे उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दात इस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रखे, पस्म कर लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटता, पोता को राख दिख रहाथ, मानस जितन करत बपात, तिसके करत वृथे जात, मारण राख अवरण कोई, सर्व जिया का राखा सोई, काय सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बिडानी, बारंग बार बार प्रभ जप पिय, पिय मृत्यु मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया, नाम था नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग, नाम रजो जंत्र बतानी, मंथन नाम मैं नाम समानी, उठत बैठत सोवत नाम कहो, नानु जन कह सद काम, बोलो जा जीवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदाद करे, भगता तुम कह चाहे, प्रभ अपने शिव रह समाये, जो हुआ हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, जिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह न जानू, आठ पैर प्रभ सह हजूरे, कहो नानु से जन पूरे, मन मेरे तिन की उठ ले, मंथन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर स्वभाव मिटावे, अवर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा,
1: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गावट परे। सतगुर से की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल से की गुर दुरमत मिलरे गुर वचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बकार ते हटे सतगुर सिख को नाम तंदे गुर का सिख उड़ पागी। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर को दी नाल संवारे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए ने कमी तिसको होत प्रभु स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नान सो सेवक गुर की मतले। बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु हृदय अरनाओ अनक बार गुर को बुल जाओ। सर्वनाथ जी का दाता आठ पैर पार भराता ब्रह्म जन्म जन्मे पार ब्रह्म एक आप नहीं के परम। सहे सियाणप लैण जाइए नानक ऐसा गुरु पागिन पाइए। सफल दर्शन पेख पनीत पर सर चरण गर निर्मरीत पेट संग राम गुर रवे पार ब्रह्म की दर्गे गवे। सुन कर वचन कर्ण गाने मन संतोख आत्म पत्याने। पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमर दृष्ट पेख्यो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे ते लै मिलाए। जे पाए उस्त अनेक सात पुरख पूर्ण विवेक काहू भो न पूछ ब्रह्मी अगम गोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वय सुखदाई ताँ की कीमत इन पाई। अनक भगत बंदनित करे चरण कमल हृदय समरे। सत बलिहारी सतगुर अपने नान जी प्रसाद ऐस प्रज अपने। युवरस पावे जन कुए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरखा नाही करे बनास जा के मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेवक को दे मोह माया के संग लेप मन में राखे हर हरेक अंधकार दीप प्रकाशे नानक परमो दुख चैना से तौत माहे ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई। जन मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण जैसे पाओ चुका निरपोह बसे सगल व्यास मानते खे नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी सासं जप नाम रारी तित पाई चूके परम गुण। सुन नानक हर रजसन निर्गुण आप सरगुण पियोही कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रवाह बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्वलंतर एको सोए। ओत पोत रवे आरूप रंग पै प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी स्लोक साथ न चले बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक तन सार संजना मिल करो विचार एक सिमर नामदार और पाव सामीत बसारू चरण कौन रिद मिरदारू कर्ण कारण सो प्रसुरत दृढ़ कर गहो नामरवत ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्भवंत एकास राखो मन बाहे सर्व रूप नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस को निस बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सो बा को करे पढ़ी करनी सा सो बा पाजर की सरनी अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हरब खतलाए सरबन दान में हर नाम न दान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर के नाए वैद सावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जा कर दे बस उर सोए काल ताती ठांडार नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाव पौ बिन से पूर्ण व्यास भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जम्फासी तात विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गौण मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनुक पाप न छूटन हारे सिमर सास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक पल पाए सांगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटम्बर बनता इनते कहो तुम कौन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जीन दिए तिस बुझे न बगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मातू ले अने भगत बिना बोडू पे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलबक जाए आप जपो और ना जपाओ सुनत कह रहत कर पाओ सार पूत सतर को नाओ सहज सपाए नान गुण गाओ गुण गावत ते उतर समैल बिनस जाए हां में विक पैल होए अचिन बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समार शाड सियान सगली मना सासन पावे सचना हर पूंजी सच करो बिहार इहां सुख गर्गे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ नंत मंथन जाप एक पवन एको एक एक अरे आप पूर्ण पूर्य प्रभ्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्रात के मंथन अंतर एक प्रव्रता गुरप्रसाद नानक कजाता श्लोक फिरत प्रव आया भरिया तो सरनाई नानकी प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए अटपदे जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवर नाम साजना की मागो तुर पार ब्रह्म मेरे सरदापुर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास प्रभ तुम्हें त्याओ चरण कमल सो लागे प्रीत पागत करो प्रभ की रतनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रसार प्रभ की दृष्ट महासुख हुए आरस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जान तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डराने सो पर परे प्रेम संग उपजे जाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अर्थ प्रकाश अंधलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक की मनसा पूरी पही सदगुर ते निर्मल मतले जन को प्रभ होयो दयाल सेवकीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन्म मरण दूपर गया इच पुण्य सरदा सा पूरी रावरिया सत्संग जूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे ये काल न पाने सो क्यों बिसरे ये किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे ये जीवन जिया सो क्यों बिसरे जगन में रखे गुर प्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे ये बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा घड़े गुर पूरे तते बजाया प्रभ अपना नान जन त्याया साजन संत करो एक काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो आवरे नाम पाओ भगत पाए कर ये संसार बिन भक्ति तन हो शीशार सर्व कल्याण सुख निर्नाम बूट जात पाए विश्राम सकल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मंत्र यंत्र ईसाओ नेत्र पेक दर्शक हुए मन बिकसे साचर तोये पग जना के मन तरंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाव जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रेहा सर्व सुनाए प्रभक्षण दीन दयाल भक्त वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद कृपाल सर्व कटा कर्तृपाल आल पुरख कारण करतार भगत जिना के प्राण दार जो जो जपे सोए पनीत भगत पाए लाए मनहीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्वे मुक्त वो पाए एक निमक हर के गुण गाए अणक राज भोग पड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत।

जब अकार यो कच न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहु किसे व्यापत जब अपना पापार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेल आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस को बनी जय ता जब एक हरगम पार तब नरक सुर कौ कौन उतारु जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंदर बादे अपन आप आपी चर्चा नानक अपन रूप आपी उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पैपर बीन तह वेद कतेब कहा कुचीन जब अपन आप आपुर तारे तौ सगन अपसगन कहां बिचारे जय अपन ऊच अपन अपनीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय अचल छेद भेद समाया ऊहा किस है व्यापत माया आप उसको आप है आदेश तेह गुण का ना ही प्रवेश जय कै एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप त्यारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आप सुखाओ आप है पहुंचा जय आप रचियो परपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पापुन तै पही कहावत को नरको स्वर्ग बंचावत आल जाल माया जंजालु हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कै जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दुह पाका आपे धनी उनकी शोभा नुह बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोग निरजोग जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेशुमार तागंत्य तुले

नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टारू अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारू अपहे का विस्तार जात सभावे सृष्ट उपाय आपने पाने ले समाये तुम ते पे नहीं किच होए अपन सू सब जगत परोए जाकु प्रभु जी वा बजाई सच नाम सोई जन पाई सो समदर्शी तत् का बिता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर का को जाई सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीन बपात जो जो रचियो सुति सहत्यात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक जानिया जन लागा हर कहनाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जग के मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर दिन पूज है गुरु के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देगा करो उदार अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर पर देखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक फल पावो हलत पलत दो लेहो सुवारो राम नाम अंतर उतारो पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गैने बैके तुम्हारी एका टेक रखो मन वाहे नानक बहुर नया वह जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख नहार ते आए निरखो जपै सगल पौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभु राखे सुनाई दुख नाम जपत मन हुआ सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार श्री ऊपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमर जाकी दृष्ट अमृत दर्शन पेख तुद्र सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञानंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नौ निदमृत प्रभु का नाम देही मैस का विश्राम सुन समाधन हते नाथ कह न जाई चर विस्मा तिन देखिया जिसाब दिखाए नानु तिजन सो जी पाए सुवंतर सो बार अनंत कट कट व्या प्रया भगवंत तरण माय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंत पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माई चार कुंड दिशे समाय दिशे पे नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद ब्रह्म सिमरत में देख शशिय सूर नखित्र में एक बाणी प्रभ की सब को बोल आप डोल न कब हूं डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तिन में एहो विश्वास
संत जना का भेखण सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुवचन सर्वव्यापी राम संरचन। जिन जाता दिस किए रह सत वचन साधु सब कह, जो जो हो सो ही सुख मान, कर्ण कराव नार प्रभ जान, अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख समोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ति सगली युत पात, तिस भावित करे विस्तार, तिस भावित एक ओंकार, अनिक कला लखी न जाए, जिस भावै तिसलय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर गज साब जनाई, नानक तिजन आप बुझाई, सर्व भूता अवतारा, सर्व नैना पेखनहारा, सगल समग्री जा का तना, पंजसा पी सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की निमाया, सब कह मदलिप तो रहे, जो किच कहना सुआ पे कह, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, स्त्रि हुई सुनाई, बुरा उरे कहो कि न कच करा, हा भला कर तू तत नी किया, पे जाने अपने जी की, आप साजधारी सब साच, उत पोत अपन संग्राज, ताकि गदमित कही न जाए, दूसर हुए त सोची पाए, जिसका किया सब प्रवान, गुरु प्रसाद नानक क्यों जान, जो जाने तिस दा सुख होया, मिलाए ले प्रभ सोयो, तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन का है सुआऊ, जन कै संचित आवे नाऊ, आ मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाऊ, अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे छिंद, आस अनित्या गोतरंग, संत जन की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साथ संग अगन सागर तरहो, हर तन के परले हो पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, सत्संग परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत हो तो दारू, आप तरह लुक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहत वाजय, सुन सुन अंत करे प्रभु का जय, प्रगटे गोपाल महंत के माथी, नानक कुदरी तिन कै साथी, शरण जोग सुन शरण ही आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए गल बैर भई सबरे, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जिंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो तनिधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हुए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब त्यूच पाए स्थान, बौर न हो वह आवन जान, हर तन खाट चले जिन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप योग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कह मत सगल ति उदास, सुंदर चतुर्थत काव्यता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम बचन मन सुनी, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मह ताकि गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपरा सा संग मिटे, संत कृपा ते जम थे चुट्टे, जा कै मस्त कर्म प्रपाई, सा सर नानक थे आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै,
दुलभ दे तत्काल उदार है निर्मल शुभ अमृता की बानी एक नाम मनवाई समानी दुख रोग बिन से भय परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पिएंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस है पाग ते नर फेर न देह धरेंगे, कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो, नात फ्रियो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो, बास पियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा को सीस नेवायो, को बुतान कौ पूजत है पाशो को मिरतान कौ पूजन तायो, कूर के रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो, कूर क्रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दोष्ट सबै तुमका वहो आप हाथ दय मुहे बचा वहो, सुखी बस है मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरिया है, हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कार बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बात कियो, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै, जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा, जब अकारख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीने ओत भुज खान बहुर राच दीने, कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा।

तरी ही श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता। जी अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित तो हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है आय है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शवाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़क के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री अस तुज जब पय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई। सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन के जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुहे बखान्यो। दोहरा

कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद पुराण किताबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन

दर्शन रूप अपार कीर्तन आवय अर्चा पूजा अग्रभास वैकार जोगी सुनते आवर जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार्य

हिकमत हुकम न प्रभु पतियाना, सहस पात करह चतुराई, संग तुहारै एक न जाई। सो सो जब दिन राती, रे जी चले तुहारे साथी, साध सेवा लावे जे आपे, नानक ताको दुख न ब्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन उठे सुख होए, नानक सब महरब रहया, थान तनंतर सोए। पौड़ी हेरों घट घट सगल कै, पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान। हौ छुटकै होए आनंद तेहे, हौ नाही तह आप, हते दुख जन मह मरन, संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, और कछु न किन्हु किया, नानक सब कछ प्रभ ते हुआ। श्लोक लेख कतह न छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनहगार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहि न जानत तत। लाहा माया कारणे, दह दिस ढूडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमक न मन है बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपट चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए। तुद भावै ता बख्श लहे, खोटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक खात पीत खेलत हस्त, परमे जन्म अनेक, पवजल ते काढो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो, अनिक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सतगुर बचन समाए। खिमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर पई, आनंद सुख विश्राम। खेप निबाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करह आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है, जे घट घट

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी। अखर मह त्रिभवन प्रभ तारे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन वख्याना अखर मुक्त जुगत भय भरमा अखर कर्म किरत सुच धर्मा दृष्टमान अखर है जीता नानक पार ब्रह्म निर्लिपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुख हो तुहारिया मोही देख दर्श नानक।

हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परो। एक श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुद्धरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नम है जुगाद गुरे नम है सतगुरे नम है श्री गुरुदेव नम है अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कले स्तन माहे मिटावों सिमरों जास बिसंबर एक है नाम जपता गंत अनेक है वेद प्राण सिमरत सोदाखिर किन्ने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी नयावै कांकी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारु सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुपला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ता कैला गौ पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किच सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माही समाये प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया
हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा प्यान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जी मार गयो जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनिक बिगन जय आए सुंगार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कूट पाप खोवे, सा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जे मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जे पैडे मा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महा प्यान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहा त्रिका मन तुझ आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरकै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै ब्रित विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन सुमाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती,
वर्त नेम करै बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास पिसर थीवै अगन माए हो मत प्राण कनिकसव है वर भूम दान न्योली कर्म करै बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निम कर शरीर कटावै ताओ भी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्व गुमाना मन ते हुट्टै सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध का होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सियाणप जम का भाव व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण न त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूट सुनाही उपयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सात संगे हों मैं छूरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साथ संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गणी है सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम चिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पापुन नहीं लेपा निर धन को धन तेरो नाऊ निथावे को नाव तेरा थाऊ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देव दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा काए अंतर सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सुकुए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एयानिया सो प्रभ सदा सुमाल जिन किया तिस चीत रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सा सुवार सिगारिया गर्भ अग्न मह जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाऊ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीजे जे प्रसाद तार उपर सुख बसह सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुल्ला जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद ब्यापे नानक काड लेहु प्रभ आपे आदंत जो रख नहार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव नित पावै तास्यो मूड़ा मन हिलावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताकू अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसै बिसारे मुग्ध अजान सदा सदायो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमान जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै
चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भस्म संग हुए अंधकूप मैं पतत विकरा नान काट लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छप्स नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुआन अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहु ओढ़ निभावे कहां बुझारत बुझे डूरा निष्कही है तू समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे ताओ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुआवे न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अंध केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रुद्ध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत चेते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण विकोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ठाकुर की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी देरास खात पीत बरतैन दौला सपनी मान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रति ताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस इसी आज्ञा राखे प्रभ की आज्ञा मान माथे उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान नेत बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सह मन पुछतावे जो दिस सो चालन हार लपट रहो तय अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजुबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा विहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाऊ नानक ताके बल बल जाऊ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नी प्रीत मुखो गंडलावत
जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेसै आप न करे, आवत जावत जन मैं मरे, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने, या पह या पाप करत नबीरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नीरा, पाप सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावे तिस लै लड़ लाए, तांत नंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लाव है, तिसको सिमरत परम गत पाव है, जे प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसह त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है, तिसे त्याग तवर लुभाव है, जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय, जे प्रसाद तु सब को मान्य, मुख ताकू जस रसन बखाने, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दरगह मान पाव है, नानक पत छेती कर जाव है, जे प्रसाद अरु कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही, जे प्रसाद तिरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ताके, जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन साफ साफ सिमरो प्रभ ऊचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद अपूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद अश्वह सवारी, मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत्य सहते आई, तिसह त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान, मनाठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी, जे प्रसाद तिर सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तिर निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जस कहै, जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पिखै विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है, सा प्रभ त्याग अवर कतला गहु, गुरु प्रसाद नानक मन जागहु, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मन हो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप, जे प्रसाद तिर कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्योराच, जे प्रसाद सब की गत हुए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गावाए सो हर गुण गाऊ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया, जित जित लावो तित लगै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ, श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी,
साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटै अभिमानु, साध के संग प्रगटै सुगयानु, साध के संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही सुमानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैनु, साध के संग न कत हुता वै, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैरु, साध के संग न बिगा पैरु, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बेड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग ना कब हूं तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्तक उच्चर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध के संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग दड़ै सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साधृत बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रमीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की

चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा हो, रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने सुखां विच नहीं, ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए, दुख तां आउंदे ने जदों तू उहनूं भुल जांदा। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने, अपनी बेटी दी मैरिज है व्याह है पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड के अपना नेम निभाण चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उहने नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा व्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुक्र करन दिया, जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुक्र करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नूं भी ऐसी बख्शिश मिलती है इंज लगता है भी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कित्थों है, सो लगा सतगुरु सेव जा को कर्म तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा सतगुरां दे बचना नूं जिंदगी विच कमाउणा।

उस सेवक नू कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सह उपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुर दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है जिदे ते सतगुर दी प्रसन्नता है, सतगुर जी तुट के उसनों सतसंगत दी दात दिंदे ने, नाम दी दात दिंदे ने, अपना बना लैंदे ने। उस सेवक दे सतगुर जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करे रही है। जो सेवक सतगुर नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह रहा, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होण वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर किसे। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इसनूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जान का गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियां दियां, पशुआं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौण की भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर ते कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जा। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁ ਨ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,